ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिए ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसिए अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानु वैल है जाल पा

हिंदुस्तान दी धरती उपर कुछ त्योहार ऐसे मनाए जाते ने जेड़े खास खास रुत्तां दे नाल संबंधित ने, जिवें कि इन्हां दिनां दे अंदर बसंत नूं भी बड़े लोक चा मलार दे नाल मनांदे ने, ते बसंत आउण दे नाल जिथे पाला सर्दी घटदी है ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी पैंदी है, ते हर पासे चार चुफेरे फुलां दी महक फुल खिड़े ने, ते जिमीदारां ने खेतां विच जिथे भी फसल बीजी सरों दी इस तरह मानो जिवें कि पीली चादर ने सारी धरती नूं ढक लिया होवे, इस बसंत दी रुत दे विच ही रुखां नूं पत झड़ तों बाद उस परमेश्वर दी दया नाल नवें पत्तियां दी दात मिलदी है। ते गुरु नानक साहिब जी ने अपनी बाणी विच बड़ा प्यारा बचन किया, कह लगे बसंत दी रुत विच हर एक मनुख प्रसन्न है, जीव जंतु खुश है, धरती दी बनास्पति मौल गई, पर गुरदेव कहिंदे ने याद रखी असल विच मनुख लई ओ ही रुत चंगी है, बसंत ओदे लई जिदे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम टिक गया, जिसदे हिरदे विच गुरु की बख्शी हुई बाणी दा निवास हो गया, ते जिस मनुख दे हिरदे विच परमेश्वर गुरु निरंकार दी कृपा नहीं टिकी, ओ बसंत दी रुत विच सारी दुनिया खुश है, ओ बसंत विच भी इसे तरह तुरिया फिरदा है जिवें किसे ने अंदर नूं अग ला दित्ती होवे। सतगुरु ने बचन कीता, कहन लगे नानक तिन्ना बसंत है। गुरु नानक साहिब जी दे बचन ने कहिंदे ने बसंत उहनां लई है जिन घर वसिया कंत, कंत दा अर्थ है मालक पति, जिन्हां दे हिरदे विच घर विच मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु परमेश्वर सतगुरु वस गए, नानक तिन्ना बसंत है जिन घर वसिया कंत, जिनके कंत दिशा पुरी, ते जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु नहीं से ऐनस फिरै जलंत, ओ दिन रात बसंत दी रुत विच भी सड़दे पए। इसे तरह रुत्तां नाल संबंधित आ होली दा इक त्योहार है, क्योंकि आपां भावें गल खोले महल्ले दी करनी है पर सानू पिछोकड़ विच वाचना पएगा खोली दा की भाव सी, खोला महला क्यों आरंभ होया। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ने आ ते हिंदुस्तान दे इतिहास वल झाती मारने आ, मुद्दतां पहला हिंदुस्तान दी धरती ते हरनाक्ष दे घर दे अंदर प्रहलाद पैदा होया, ते गुरु ग्रंथ साहिब ने इस बारे बड़े विस्तार नाल वेरवा दिता, ते भाई गुरदास ता ए बचन करदे ने हे प्रभु असी सुनिया कि कलरी भोए विच कलरी जमीन विच कदी फसल नहीं पैदा हुंदी, हरनाक्ष वर्गा कलर वाला मन जेड़ा जिहड़ा कलर वर्गा घर है उस दे घर दे अंदर तुसी प्रहलाद वर्गा कमल दा फुल पैदा कर दिता। सतगुरु ने बचन कीते बाणी विच कहिंदे ने हरनाक्ष ने कुछ जप तप कीता, कुछ कमाई कीती, होली कित्थों आरंभ हुई, कमाई करन तो बाद इन्हें एक दावा कीता सी मैनू हुण कदी मौत नहीं, तरीके भी इन्हें बड़े सोचे, इन्नी चतुराई तो कम लिया कि इन्हें कहा मैं कदी मरना ही नहीं, ते कहिंदे ने एक पासे ऐलान कर दिता अज तो बाद परजा विच केवल मेरे नाम की चर्चा होवे, मेरे नाम दी पूजा कीती जाए, ते परमेश्वर दी करनी एदे घर दे विच ही जिहड़ा पुत्र पैदा होया है उहने सब तो पहला आवाज बुलंद कीती हरनाक्ष दी पूजा नहीं, जे पूजा करनी जे उस प्रभु दी उस राम दी करो उस निरंकार दी करो जिहड़ा घट कुट विच समाया है ते जिहड़ा हरनाक्ष वर्गे बेंत पैदा करके इन्हां नूं खपा सकदा है। जदों प्रहलाद ने हरनाक्ष दे पुत्र दे ए मनो आवाज निकली के राम नाम जप वे करो, हिरदा हर जी को सिमरन धरो के प्रभु दे नाम नु जपो,
ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइए, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइए। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया, पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द आज भी गुरु के सिखा नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असा सुने बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है, इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया, शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दिए कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किक्कर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया, ते इहदे चौगिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाईए, ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया, ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी का पोचा फेरिया, ते थल्लों अग बाली, ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, वह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां, ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा, उहदा सरूर, उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है, ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान
परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईए ते उच्चे आचरण नू किकर दे सत बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया ना पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विच्चों शराब नहीं एक रस अमेओ चुवाई है एदे विच्चों अमृत दिया बूंदा डिगदिया एक रस अमेओ चुवाई है कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रस रोया एनस बनी प्रेम में लागी शब्द अनाहत गया एनस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रही ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणे मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कड लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी उहनां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय कर दे ओ लोग तन नू तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया है तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे है पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी दा असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुकां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है
ते जे हिंदू है ते चढ़दे नू पानी छड़ के लेंदे नू पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए है? कह लगे हां। फिर किन्ने तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नू दईदा लेंदे नू नहीं? सतगुरु बाबा जी कहिंदे ने चढ़दे नू क्यों? कहन लगे कुछ तो सूरज नू पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नू पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्ने कु दूर ने? उन्होंने करोड़ा को दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झटन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल का उत्तर दे दिता, तुसी पुछे असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नू पानी दे रहे हां, ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नू, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई वारी साडे वीर कहिंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बदा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बजा। कहन लगे लेंदे नू मेरी धरती विच बीज पिया फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नू भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो एनी अकल नहीं, आ गंगा विचों पानी निकल के तेरे पैरां विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, एने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नू सिंजने आ? कहन लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा है। साहब कहन लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, ओ साडी धरती ते सैकड़े कुआं ते वे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसे ने सोचे ही नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते ए पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जेड़े मर चुके प्राणी ने, जेड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जेड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती, ते मरन तो बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तो पुछिए भी जेड़े लोग जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तो बाद पितरां नूं पानी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा है, दसो उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई बारी भाणे अखर नू दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नू सट लग जाए, असी कहने भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहने भाणा वापरिया है, ते जदों जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा है। आ एक शब्द हुंदा है आनंद साहिब विच, जां तिस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। कहिंदे जां तिस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने, जिवें हुण एक अखर है जलूस,
ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਅਕੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਤਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੈ ਉਦਨ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੀ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਤੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ।

सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच योगादि सच खैपि सच नानक खुशी भी सच जेता समुंद्र सागर नीर भरिया तेते अवगण खमारे दया करो किछ मेहर उपाव डुबदे पत्थर तारे जियड़ा अगन बराबर तपै

बछाण सुख होवे दिन राती, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत एक, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। परणवत नानक तिनकी शरणा, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक, जुगो जुग अटल, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, उस पार ब्रह्म परमेश्वर जी की दया, सतगुरु जी दे बख्शे हुए उद्यम और प्रेरणा का सदका, आप जी खालसा जी का सिरजना दिवस पिछले तकरीबन 2 हफ्तों तो वध समा हो चुका है मना रहे हो। आओ

करना जिन तू नाही विसरिया, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दिमालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच बैठ करके आप जी ने बड़ी एकाग्रता दे नाल और बड़े भावपूर्त शब्दों विच महापुरशां तों अमृत दे संबंध विच विचारां सरवण कीतियां ने, क्योंकि पिछले कुछ दिनों तों निरंतर आपां अमृत दी गुरबाणी दी रहत दी गल करदे आ रहे हां। ते आखिर इस विचार दा भाव केवल इतना है कि किते अमोड़ मन दियां वागां सतगुरु दे हाथ विच पकड़ा दईए ते एक गुरमत दे गाड़ी राह उत्ते चल पवे। आओ करो कृपालता साध संगत जी कि पिछले कुछ दिनों तो आपां एक लड़ी आरंभ कीती है। पहले दिन जिस दिन वैसाखी दे संबंध विच विचार आरंभ कीती सी, आरंभ वाले दिन बेनती कीती सी कि इस जीव दा सतगुरु दे शब्द तो बिना सहारा कोई नहीं। दूसरे दिन बेनती कीती सी कि अमृत दी दात अमृत है कि कल आप जी दे समक्ष वैसाख दे महीने और वैसाखी दे संबंधी विचार कीते सन। ते देखो ऐद की मालक ने सबब किहो जिहा बनाया है। कई बारी कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां ने जदों कुदरती तौर ते इतिहासिक घटनावां मेल खांदियां ने ते मनुख दा अंदर प्रसन्न हो के कहिंदा मेरे दाता साडी कीती हुई इस सेवा नूं तुसीं कबूल करदे पए। कल बुधवार सी, वैसाख दा महीना सी आरंभ होया, उस दिन दातार जी ने अमृत दी दात दिती। मैं हैरान होया, रतन सिंह भंगू दा प्राचीन पंथ प्रकाश अज पढ़ रहा सां, ओह कहिंदा सन 1756 नूं जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत दी दात दिती उस दिन भी बुद्ध वेले दा बुधवार दा अमृत वेला सी। कल भी बुधवार सी ते जिस दिन कलगी वाले ने अमृत दी दात दिती उस दिन भी बुधवार सी। आओ गुरमुखो जेड़ी विचार आपां कल छड्डी सी, क्योंकि लड़ी दा ख्याल जरूर हथ रखिए, आपां विचार आरंभ कीती सी वैसाख भला शाखा वेश करे धन देख हर द्वार, आओ दया करे कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अज ना मोलो कह लगे कीमत कौन करे तुद पावा, देख दिखावे ढोलो कह लगे दूर न जाना अंतर माना, हर का मैल पछाना नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन मन। आओ इसे शब्द नु आपां अगे ले तुरने, गल अमृत दी होनी है, आपो अपना ढंग है, आपो अपनी गल करन दा तरीका है, पर गल करन दा मकसद केवल कलाकारी नहीं, गल करन दा भाव है साडे कहण वालियां विच ते सुनण वालियां दे हिरदे विच गुरु दा शब्द ते गुरु का अमृत टिक जाए। आओ करो कृपा साध संगत जी, विचार आरंभ करन तो पहला आप एकाग्रता इसे तरह बख्श देखो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब धन गुरु नानक साहिब जी का
ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ

अकाल मूरत अजूनी सैतम गुर प्रसाद जप आदि सच योगाद सच है सच नानक खुशी पी सच मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझे आ गया अरदास मैं पूर थाऊ नाही जिस पह करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझगी पास ना हो जती सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया परम सम्मान योग चवर शतर तख दिमालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी विच बैठ करके आप जी ने बड़ी एकाग्रता दे नाल और बड़े भावपूर्त शब्दों विच महापुरशां तों अमृत दे संबंध विच विचारां सरवण कीतियां ने क्योंकि पिछले कुछ दिनों तों निरंतर आपां अमृत दी गुरबाणी दी रहत दी गल करदे आ रहे हां ते आखिर इस विचार दा भाव केवल इतना है कि किते अमोड़ मन दियां वागां सतगुरु दे हाथ विच पकड़ा दईए ते एक गुरमत दे गाड़ी राह उत्ते चल पवे। आओ करो कृपालता साध संगत जी कि पिछले कुछ दिनों तो आपां एक लड़ी आरंभ कीती है। पहले दिन जिस दिन वैसाखी दे संबंध विच विचार आरंभ कीती सी आरंभ वाले दिन बेनती कीती सी कि इस जीव दा सतगुरु दे शब्द तो बिना सहारा कोई नहीं। दूसरे दिन बेनती कीती सी कि अमृत दी दात अमृत है कि कल आप जी दे समक्ष वैसाख दे महीने और वैसाखी दे संबंधी विचार कीते सन ते देखो ऐद की मालक ने सबब कीहो जिहा बनाया है। कई बारी कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां ने जदों कुदरती तौर ते इतिहासिक घटनावां मेल खांदियां ने ते मनुख दा अंदर प्रसन्न होके कहिंदा मेरे दाता साडी कीती हुई इस सेवा नूं तुसीं कबूल करदे पए। कल बुधवार सी वैसाख दा महीना सी आरंभ होया उस दिन दातार जी ने अमृत दी दात दिती। मैं हैरान होया रतन सिंह भंगू दा प्राचीन पंथ प्रकाश अज पढ़ रहा सा ओ कहिंदा सन 1756 नूं
جس دن گرو گوبند سنگھ جی نے امرت کی دات دیتی اس دن بھی بدھ ویلے کا بدھوار کا امرت ویلا سی کل بھی بدھوار سی تے جس دن

जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदमा अपदा ते राखिया गणका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए।

तो जो कुछ भी है सब शुद्ध है। अगर हृदय अशुद्ध है तो जो कुछ भी है फिर वो अशुद्ध है। इधर एक गाथा है मुख्तसर, वो भी मैं कह दिया तो फिर मैं अगे चला। कहते ने सखियां श्री कृष्ण दिया जमुना तो पार जाके दुर्भाषा ऋषि नु भोजन कराना चाहदिया सन, पर जमुना उस दिन चढ़ी हुई बड़ी जोर दी, पार जाना बड़ा औखा। वो जमाना जब पुल नहीं आते सन, लोग तैर के पार करते सन, उंज लंघ के पार करते सन या नौका, ते चढ़ी हुई इतनी जमुना ना नौका चल सके ते ना उंज लंघ के बंदा पार कर सकता सी। ते गईयां श्री कृष्ण जी पास, भाई दुर्भाषा ऋषि नु भोजन जरूर छकाना है, ते की करिए। ते सारिया सखियां कोल भोजन दे परोसे थाल, श्री कृष्ण कहन लगे जाके जमुना दे अगों फरियाद करो, हे जमुना जे दुर्भाषा ऋषि निराहारी है, जे कृष्ण जती है ते तू सानू रस्ता दे दे। गाथा है कहन जमुना ने रस्ता दे दिता, ते सारी सखियां कोल जिहड़े थाल सन ना भोजन दे दुर्भाषा सारे ही खा गया। हैरान हो गया इतना खा के ये निराहारी है। ते सौ सौ सखियां पत्नियां कहन 16,000 पटनानियां सन श्री कृष्ण दी, असी ते एवें मुहम्मद साहब ते इल्जाम लाने उहदियां 10 पत्नियां सन श्री कृष्ण दियां 16,000 पटनानियां ने। मेरे ख्याल सारी मथुरा उन्हां दियां पटनानियां ही सन, इंज लगता है भरिया पे सी मथुरा। हकीकत है ते गाथा है, पुराणक गाथावान है। ते मैं एक एक अखर थानू पढ़ के सुना रहे हैं, अपनी तरफ एक शब्द भी जोड़ नहीं रहा। 16,000 पटराणियां विजय कृष्ण जती है ते रस्ता दे रहे, दुर्भाषा निराहारी है ते रस्ता दे रहे। मिल गया रस्ता ते हुण आखिर प्रश्न भी इन्हां सखियां ने दुर्भाषा ते कीता भी तुसी निराहारी ते 16 थाल भोजन दे छक गए साडे ते, कृष्ण जती ते आनंद पटराणियां उस दियां, गल समझ च नहीं आई। तो दुर्भाषा ने कह दिता भोजन दी इच्छा ना होवे ते भोजन कीता जाए निराहारी, ग्रस दी इच्छा नहीं है ते ग्रस दे च प्रवृत्त होया जाए फर्ज दी पूर्ति लई तो जती। वो निरीक्षित ने, मैं निरीक्षित हाँ, इस वास्ते वो जती है, मैं निराहारी हाँ, मैं सारा दिन भोजन नू याद नहीं करता, भजन करता, भोजन मिल गया तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मैं निराहारी हाँ। गल सखियां दी कुछ समझ च आई पर गुस्ताखी माफ, बाद विच पैरोकार जो कृष्ण दे पैदा होए तो उन्होंने सोचा नच टप के कोई भगवान हो सकता है तो शायद नच टप के कोई भगत भी हो सकता है, तो ब्राह्मणा ने तौर तरीके चलाए नचो टपो, मंदिर नाच गाने दे अखाड़े बनता है। जे कृष्ण नाल सखियां दे नृत्य कर सकता है तो हुण मंदिरां विच देवदासियां चाहीदियां ने, तो देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर। अज भी बहुत सारे मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बने हुए हैं, खास करके तमिलनाडु, कर्नाटका ते आंध्रा, थोड़ा जिहा महाराष्ट्र का हिस्सा। आवाज उठ गई है प्रथा खत्म होनी चाहिए। मंदिर दुराचार दे अड्डे बन गए, गंदगी दे अखाड़े बन गए, और मंदिरां विच ये गंदगी हजारां साल तो देखी गई। रूहे जमीन विच इक्को एक हिंदुस्तान विच पावन पवित्र मंदिर सी और है हरिमंदर साहब, उहदे नाल भी इन्होंने गंदगी जोड़न की कोशिश की। बई इत्थे नगन बीबियां मिलियां, कौन दसे तुसी नंगे हो ते बीबियां की नग्नता का जिक्र कर दो, नंगे ते तुसी हो। हकीकत यह है, असलियत यह है, सच्चाई यह है। इत्थे कोई देवदासियां की प्रथा नहीं है, जिथे देवदासियां की प्रथा है यह सिलसिला उत्थे वेखो जाके और खुले रूप में मौजूद है। यह सिलसिला कोरनार के मंदिर च देखो, खजुराहे के मंदिर च देखो, चित्रां च देख लो, मूर्तियां च देख लो, इत्थे नहीं है।

शरीर नु तो लेन नाल मन ते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे। मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

एकत्र करी है माया, दान पुण्य नहीं संतन सेवा, एक ही काज ना आया, कार्या भरण सवारी सिज्जा, कामन थाट बनाया।

कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति के नार मन नया। छत्रपति बादशाह दी बेगम है, स्त्री है, उदे घर हाथी ने घोड़े ने, उदे तन दे कपड़े बड़े कीमती ने विशाल ने। कपड़े दे राही गुनाह है। कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार मन दे आ। ये छत्रपति राजे दी स्त्री है, इहदे घर हाथी घोड़े ने, सोना चांदी है, नीलम है, मोती ने, हीरे ने, बथेरा कुछ है, और उहदे कपड़े बड़े कीमती ने, सुंदर ने। कबीर हैंगे बाहन सघन घर छत्रपति की नार, पर तासो कुटंतर ना कुजे हर जन की पनिहार। वो जो हरी जन की पनहारी है, सारा दिन हरी दे भगतां नू पानी पिलांदी है, उहदे जिहड़े कपड़े ने उहदे सामने सिकंदर लोधी दी बेगम दे कपड़े कौड़ियों भी खोटे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हुण चेले कहण लगे, भगत जी असी थानू दस्या है ना कपड़े जर्री नाल से ले आए ने, जर्री दा कम है, नीलम ते मोती जड़त ने, हीरे जड़त ने, तुसी एवें कह दिता वो कपड़े कुछ नहीं, वह बेगम कुछ नहीं, ए पनहारी एदी महिमा गायन कर दिती, ए चीथड़िया की महिमा गायन कर दिती। हुण कबीर दूसरे सलोक च कहिंदे ने, सुनो मेरे को, कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, मैं सराजे दी स्त्री नूं क्यों भंडिया, क्यों निंदा कीती है, मैं इसनूं क्यों फटकारिया, क्यों नीवां आखिया। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ये जो हरी दी चेली है, हरी दी पनहारन है, मैं इसनूं मान क्यों दिता है इतना, और उस ते फिटकार क्यों पाईए इतने। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे दिखे को ए सिमरे हरी ना। उहदे कीमती कपड़िया विच हंकार है, वाशना है, इहदे चीथड़िया विच प्रभु दा नाम है, हरी दा नाम है। मैं इन्हां चीथड़िया नूं नमस्कार करदा, हरी दा नाम है, उत्थे ते हंकार है, नुमाइश है, वाशना है। इसनूं भगत कबीर जी इंज कहिंदे ने, वेद पढ़े पढ़ पंडित मूए रूप देख देख नारी। लोकी किस तरह अपना समा बतीत करते हैं, जिंदगी गवांदे हैं, बस वेद पढ़ते रह गए, वेदां दे विच जो कुछ है वह होने की कोशिश ना की। इन्हूं इकबाल कहिंदे ने, तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे हुआ है, साहिब दे किताब नहीं। फिर मैं पंक्तियां थोड़े सामने रखने लगा, फारसी नुमा उर्दू। तुझे किताब से फरोग नहीं के तू किताबे हुआ है, साहिब दे किताब नहीं। तू किताब नू पढ़न वाला है, किताब दे विच जो कुछ है वो तू नहीं है। तू कुरान नू पढ़न वाला है, कुरान विच जो कुछ है वो तू नहीं है। तू वेदां नू पढ़न वाला है, वेदों के विच जो कुछ है वह तो नहीं। तू सिर्फ बाणी का पाठ करने वाला है, बाणी जिस दुनिया की गल कर दी है उस दुनिया का वासी तो नहीं, वो तेरे विच नहीं। मुर गए पंडित सिर्फ वेद पढ़ पढ़ के, वेदों विच जो कुछ है वो होने की कोशिश ही ना की। रूप देख देख नारी, बहुत शब्द वरते है, रूप पहले अपना देखना, शीशे च बड़ा टाइम जाया करना फिर दिखाना, इसे च स्त्रियां खप गई। कबीर इंज कह रहे, इसे च स्त्री जात खप गई, इसे च स्त्री जात ने अपना समा बर्बाद किया, इसे च ही अपनी जिंदगी गवाई। रूप

एक ओंकार, एक ही आकार है, एक ही ओकार है, एक ही मकार है। एक तो उत्पत्ति हो रही है, एक तो पालना हो रही है, और एक तो ही नाश हो रहे हैं। संसार दा धिर एक है, अनेक नहीं है। समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दा मूल एक है। उसे एक तो उत्पत्ति हो रही है, उसे एक तो पालना हो रही है, और उसे एक तो ही संगार चल रहे है। प्रश्न खड़ा होया, जो पालना कर रहे है उन्हों नाश करन दी की लोड़ है, ते जिड़ा नाश कर रहे है उन्हों उत्पत्ति करन दी की लोड़ है। तो सतगुर कहंदे ने खेल कोई मुद्दा नहीं, कोई मकसद नहीं है। जैसे बच्चे दरिया दे कंडे ते रेत दे घर बना देन, हस के बना देन, खुशी नाल बना देन, मस्ती दे च बना देन, और बनांदे आया बड़ा रस लेंदे, बड़ा स्वाद लेंदे, पर शाम नू जैसे घर वापस जांदे तो हस के ही तोड़ देने, उत्साह नाल तोड़ देने, उसे खेड़े नाल तोड़ देने। बनाण लगिया भी हासा, तोड़न लगिया भी हासा, बनाण लगिया भी खुश सन, हुण तोड़न लगिया भी खुश सन। खिड़खिड़ा के बना रहे सन और खिड़खिड़ा के तोड़ रहे सन। क्यों? कि बनाण दा जद कोई मुद्दा ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं, तो ऐसा बनाना एक खेल है। खेल दे च कोई मुद्दा नहीं होंदा, खेल दे च कोई मकसद नहीं होंदा, खेल सिर्फ खेल है। ऐस वास्ते सतगुरु देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान है कि समुच्चा जगत परमात्मा दा खेल है। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी की नी माया। इनो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने ने तमाशा है, खेल है। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं ते संसार दा तमाशा वेखन नहीं आया, खेल वेखन नहीं आया। खेल दे च सिर्फ एक विधि विधान है, नियम है, और ते कुछ नहीं है, मकसद नहीं है। अक्सर देखा गया है कि कारोबार दे विच, धंधे दे विच, या आम संसारी किरत विच कोई बंदा बेईमानी करे तो जगत कबूल कर लेंदा है, चलदी रहिंदी है। पर कोई खेड दे विच बेईमानी करे, ताश खेड रहा है, कोई कुश्ती खेड रहा है, या फुटबॉल खेड रहा है, गरज के जो खेल है उहदे विच कोई बेईमानी करे तो कबूल नहीं, परवान नहीं, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। क्यों? खेल दे आधार ही नियम है, ते जद नियम ही तोड़ देता तो खेल खेल नहीं रह जाता, खेल भी धंधा हो जाता है, खेल भी संसार बन जाता है, खेल भी बाजार बन जाता है। खेल ते उतने चिर तक खेल है जद कोई मुद्दा नहीं ते मकसद नहीं, ते खेल दा आधार केवल एक कोई है, नियम। तो परमात्मा दी सारी जिहड़ी बनतर है किसे नियम ते खड़ी है, और जे टुट भज है ए भी किसे नियम ते खड़ी है, पर बनाण दा उसका कोई मुद्दा नहीं। अगर कुछ मनुख बना के बनना चाहता है तो स्पष्ट गल है मनुख अधूरा है। पूरा मकान बना के कुछ बनना चाहता है, कम धंधा बना के कुछ बनना चाहता है, मनुख कुछ बनना चाहता है, तो बनन लई उन्हों कुछ चाहिदा है। मनुख दे बनाण दे नाल कुछ मुद्दा है, क्योंकि कुछ बनता है तो खुद भी बनता है, खुद भी संवरदा है, ते शिंगारिया जांदा है, ते अगां वधदा है। अगर परमात्मा दे भी बनाण दा कुछ मकसद है, मुद्दा है, ते बनाण नाल ही वह कुछ बन सकदा है, तो इतनी गल स्पष्ट है, अधूरा है, अजे अधूरा है। कुछ बना के बनेगा, कुछ बनाएगा, कुछ उसका मुद्दा है, मुद्दा उसका होंदा है, मकसद उसका होंदा है, जो अधूरा है। तो परमात्मा ते संपूर्ण है, पूर्ण पूर्ण उसनु कहने जेदी कोई सीमा नहीं, कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, कोई सीमा नहीं। तो उसदे बनाण दा कोई मुद्दा नहीं, और विगाड़न दा भी, नाश करन दा भी कोई मुद्दा नहीं, फिर की है? खेल। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। इह ते उसदा खेल है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे उस तो उत्पत्ति हो रही है, उस तो पालना हो रही है, और उसे तो ही नाश हो रहा है, और उसे दा ही खेल है, उसे दी लीला है। तो प्रश्न खड़ा होया, क्या ब्रह्मा विष्ण महेश नहीं ने? सतगुरु कहन लगे है गए ने। इस काया अंदर ब्रह्मा विष्ण महेशा, जिस उपत सब संसारा। परमात्मा

और निरप आग। अगर धर्मदाय हिस्सा नहीं देता गया तो चोर ले जाएगा, अग्न भेंट हो जाएगा या राजगर्दी दे जेर असर हो जाएगा। खैर, गुरु अमरदास जी महाराज ने इस ढंग दी लंगर दी अगम्मी परंपरा तोरी। चारों पासे आपदा जय जयकार होया। धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहबजादे दातो जी दासू जी कहिंदे ने ए जस ओ नहीं सहार सके। जैसे वक्ती तौर ते बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास नू रोस होया सी कि साडे पिता दी गद्दी लैणा जी लै गए, इस तरह गुरु अमरदास जी महाराज दे गद्दी विराजमान होण ते दातू जी नू ते दासू जी नू भी बड़ा रोस चढ़िया। अज शरीकां दे भड़काए हुए और शरीकां ने कन्न भरे। देखो, जात पात दी परंपरा ही तोड़ दिती गुरु अमरदास जी ने, वर्ण वंड दी परंपरा ही तोड़ दिती। और ए सिर्फ दातू ही नहीं, मरवाहा इत्थे अकबर दे दरबार विच फरियाद भी लेके चला गया सी कि भारत दी जो प्राणी संस्कृति है, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैस, ए चार वर्णा दी मनोत ए गुरु अमरदास ने तोड़ दिती। और साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा उपदेश भी, जात का गर्व न कर मूरख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत बेकारा। गवार है ओ जो जात अभिमानी है, वर्ण अभिमानी है। आपदा उपदेश कि जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म तो कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर होवेगा, जीवन तो ब्राह्मण होवेगा। दातू जी ने एकदम संगत दिचा के सतगुरु देव जी महाराज सिंहासन ते बैठे सन, सीने दे खिच के लत मारी। बिरद शरीर 84 साल दा सिंहासन तो थले गिरे, एकदम अपने आप नु संभाले है। ते संभाल दिया सार आपने दातू दे कदम पकड़ ले, चरण पकड़ ले और जो बेनती की थी सिख जगत दे महान इतिहासकार कवि ते ब्रह्मनिष्ठ चूड़ामणि भाई संतोख सिंह जी ने इंज लिखे ने, एक तो सेवा करत रहे हूं, द्वितीय बैते बिरद भय हूं, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदर ने थोरा। ऐ दातू जी, एक ते मेरी उम्र वडेरी है, 84 साल दा हो गया, जिस करके मेरिया हड्डियां सख्त हो गई, चमड़ी सख्त हो गई, मांस सख्त हो गए। उम्र दे वड्डे होण नाल शरीर कठोर हो गया। ते दूसरा दातू जी, मैं अद्धी रात नू उठ के ब्यासा तो जल भरण दी सेवा करदा रहा 12 वरे, लकड़ फाड़ने, तप्पड़ झाड़ने और लंगर वंडना, इस तरह दी करड़ी सेवा करके और वडेरी उम्र करके मेरा शरीर करड़ा हो गया, मेरिया हड्डियां करड़ियां हो गई ने। एक तो सेवा करत रहे हूं, द्वितीय बैते बिरद भये हूं, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदर ने थोरा। तो मेरा शरीर बड़ा करड़ा हो गया, थोड़े चरण बड़े कोमल ने, तुसी मैनू खिच के लत मारीए, किधरे थोड़े चरणा नू मोच ते नहीं आई। इंज हथ जोड़ के खड़े ने, दातू दा अहंकार ते क्रोध पानी पानी हो गया और आखण लगा, एही निर्माणता एही गरीबी, दरअसल इसे करके तुसी साडा घर लुट के लै गए, साडी गद्दी लै गए, साडी विरासत तुसी लै गए। पर ए बचन भी बड़े खुशी नाल गुरु अमरदास जी महाराज हथ जोड़ के सुन दे रहे, जिथे आपने वरण वंड जात दी प्रथा नु खत्म कीता, उत्थे एक तीसरी लानत छा गई सी देश देच पढ़ दे दी
ਇਸਤਰੀ